0: 才有话就你说路 FM
1: सोनू FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: टाइम चेक सोनू FM स्टुडियो टाइम
3: नाइन एम बिहानको 11 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतुन नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: उगांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना जो 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पोहरो ठूल जनधन को स्मृति प्रति हमी गहरो सही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी एकदम मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अतिथ सहयोग विश्वास को हम संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न कर हमी थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह रेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने वाले रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विहरा संबंधित सभी में जानकारी कराई।
1: हिमालय स्वास्थ्य वातावरण सुभाष सोलखुंडू।

0: जिल्ला हुला कार्यालय सुलुखुम्बु को सूचना
1: यही असोज 23 गते तद अनुसार 2026 अक्टूबर 9 तारीख का दिन वन पोस्टल नेटवर्क इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज नारा का साथ 152 विश्व हुलाक दिवस निम्न अनुसार को कार्यक्रम का साथ मनाइने संबंधित सबैलाई सूचित गरिन्छ। उद्घाटन हुने समय बिहान को 8 बजे स्थान हुलाक कार्यालय महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय हाजुरी जवाब प्रतियोगिता सोताङ र महाकुलुङ गाउँपालिका विद्यालय समय बिहान 11 बजे स्थान सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझ को 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

कोब्रेज इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल को सूचना। नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी को पावन अवसर में सोलु भूतकुण्ड नगरपालिका पांच स्थित माउंट एवरेस्ट इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल ने स्पोर्ट्स वीक र माउंट एवरेस्ट पूर्व विद्यार्थी समाज को संयुक्त आयोजना में माउंट एवरेस्ट अलुमनाई कप 7A साइड फुटबल प्रतियोगिता 2083 संचालन होने भएको छ। एकता का लागि खेलौ सँगै अगाडि बढौ भन्ने मूल नारा का साथ आयोजना होने इस प्रतियोगिता में सुनकुमु का अन्य विद्यालय का विद्यार्थी सहभागी जनाउन पाउनेछन्। खेल हुने मिति समय र स्थान आगामी असोज 21 गते देखि 25 गते सम्म बिहान 10:30 बजे देखि यंग स्टार क्लब को प्रांगण। पुरस्कारहरू: प्रथम पुरस्कार नगद 10,000 को साथ में ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार 5,000 ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र। तृतीय पुरस्कार नगद 3,000 को साथ में ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र। आफ्नो उत्कृष्ट खेल कौशल देखाउँदै भाइचारा बढाउने उत्कृष्ट अवसर नगुमाउनु होला। माउंट एवरेस्ट इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल सल्लेरी सोलुखुम्बु।

0: उगांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। जबकि 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जंगल को स्थिति प्रति हमी गहरो सही राष्ट्रीय विपत्ति को बुझीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारित हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखने अतीत सहित विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह। नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमीर सब सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने वाने रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विवरा संबंधित सभी में जानकारी कराई।
1: अध्यक्ष निमा टेन्डु शेर्पा हिमालय स्वास्थ्य और वातावरण सेवा सोलखुंडू।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगरपालिका ५ सोलु कुम्बु

0: chair. Sony FM, in studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 9 PM रात को 9 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
4: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएममा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू

0: बसंत को माया लुहावा चलता, 16-17 को उमेर मा जोबन को लहर चलता, कसे कसे ने ती तो मीठो याद रहता दिए के होना है ना। हो ती याद हरू नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: आयो।
2: ताकाने सामी सिते कुछ चूमे।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 PM रातको 10 बजे
3: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु